Japchisev ekonkar satnam kartapur nirbo nirvera kalmur ajuni sevang guru prasad chap ad such sugar such heavy such nanako sibi such suchi suchi na ho ve je suchi lagvar chupe chup na ho ve je laira liftar bukya bukna utri je vanapuriya par Sesya na palak hoya taika na chalene Kiv sachyara hoye kiv gure tutte pal Hukamara jai charna nanakali kyanal Hukami hova nakar hukam na ke ajai Hukami hovan ji hukam levariai Hukami utamnich hukame duk sukapaye Ekana hukami bakshisha hukame sadavavaye Hukame anda sabko bahar hukam na koe नानक के हुक्म में जे बुझे ता होवे कहे न कोई गावे को तान होवे किसे तान गावे को ताचने निशन गावे को गुण वर्याय आचार गावे को विख्या विकम विचार गावे को सस्तरे तंके गावे को चीले फिरते गावे को जापे दी से दूर गावे को वे हर हादूर कथिना कथिना आवे तोत कट कट कटी को दिगोत कोत Teta tele te tat pai, juga jugantar kai kai, hukami hukam chala e rao, nanaka viseve parvao, sacha saev sacha naev, vakya afar, ake mange te ite, tat kere datar, fer ke age rakye, jati se darbar, moke volam bolie, jasamrare piar, amrit vela sacha nao, variai vichar, Karmiave kapara nadri muktuar Nanake vechaniye ape sachyar Tabhya na jaye kita na hoy Ape apnaren jansoy Jinse vyatim payaman Nanake gave gunnidan Gavye sunyamar vakya vau Tupar har sukha le jaye Gurmukha nadan gurmukha vedan gurmukha virasamay Guri shay gugor varma gurkar paki mai जेहो जाना आका नहीं कहना कतना जाए गुरे के देव जाए सवना जिया गए कदाता सोमे वसन न जाए तीर्थ नावा जत से पावा विंबाने के नए करी जेति से तु पाई वे का विंके में मिल ले मधविश करण जमर महान जय कुर की एक सुनी गुरे के देव जाए सवना जिया गए कदाता सोमे वसन न जाए चेचुक चारे आर जा और न सुनी होए नाव खंद विच चानी है नाव सले सब कोई चंगा नाव रखाए के जस किरे जगले जजिस नर न आवे ता पर न पूछे के कीता अंदर कीता का दोषी दोष त्रे नानक नी गुन गुन करे गुन बंतिया गुंदे तेह कोय न सुजे जजिस गुन कोय करे सुनिए सिर पर सुना सुनिए तरत लकास सुनिए तीपलो पताल सुनिए तो न सके कल नानक भगत सदा विगास सुनिए दुख कनस सुनिए ईश्वर वर्मा इंद सुनिए मोत्सना मंद सुनिए जो जुगा तनवेद सुनिए सत्य हृदयवेद नानक भगत सदा विगास सुनिए दुख पाप कनस सुनिए सत्संतो ज्ञान सुनिए असत का ईश्वर सुनिए पर पर पावे मन सुनिए लगे सहेष्टियन नानक भक्त सदा विगास सुनिए तू पाप का नाश सुनिए सरागना के गा सुनिए शीर पीर पतिशाओ सुनिए अंदर पावे राव सुनिए हाथों वे आसकाओ नानक भक्त सदा विगास सुनिए तू पाप का नाश मन की कहे न जाए जे को कहे के चे पछताए राखत काम न ले कनहार मन कब करम विचार ऐसा न निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने सुर तुवे मन बुत मने सगवन रखी सुत मने मोचनता न काए मने जम के सत न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने माग तक न पाए मने पच्चियों पर गज जाए मने मगन छले पंथ मने धर्म सदी संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मने पावे मोक्ष द्वार मने परवारे सदार
Mani tare tare guru sik, mani nanakave navik, esa nam naranjan hoi, jeko manjane mankoi, panch parvan, panch pardan, panche pavitir keman, panche soe darajan, panche kagurek tian, jeko kahe kahe vichar, karteke karne na isman, dol taram kya kaput, santok taram kya kisut, Cheko buche hove sachyar talde upar ke tavar tarti hor tre hor hor tiste var kare kamjor ji charam ga ke nav savan likhya buri kalam e ho lek lek jane ko e lek lek ya ke ta hoy ke te tan siari orup ke te ta chane kunkut kita pasao e kokobao tiste ho e laktariao Gurit kavan kaha vichar, barina java ekovar, jyotu pave sai balikar, tu sada salaman nirankar, asanka japa sanka bao, asanka puchya sank taptao, asankurya muvet pat, asank chok murai udas, asank bhagagungyan vichar, asank satya sank datar, asank surmo baksar, asank mlivlahetar, Gurit kavan kaha vichar, parinna java ekovar, jyotu pave sai balikar, tu sada salaman nirankar. Asanka murara makor, asanka jor hara makor, asanka marka jai jor, asankal bhatya kamai, asanka papi pap kar jai, asankuryar kure firai, asank malish malva kai, asank ninda sikare var. Nanak neech kae vichar, barinna java ekovar, jyotu pave sai balikar, tu sada salaman nirankar, asanka nava sankata, vagamma gamma sankalo, asankare sirva rahoe, akri namakri sala, akri giyangi kunga, akri lakam bolamban, akri sansan jovekan, jenalekete sernai, Je furmae te te pae, je ta kita te tanao, venna venna e kotao, kurut kavanka vichar, parinna java e kovar, jyotu pave sai balikar, tu sada salaman nirankar, bariye hatare tande, pani tu te huteske, mut paliti ka parahoe, te sabuna e odoe, Marie ma papa ke sang oto pena ve kerang puni papia karnae kar kar karna lagne jao ape picha pe vikao nanak hukamia vo jao tirata tia datan je ko pave terke man sunie manie ma kita bao antarga tira manna sakun tere mena ekoe vingun kite vagna hoe Sua sadvani varmao, satsuan sadamanchao, kavan sovelavat, kavan kavan jit kavanavar, kavan siruti mao, kavan jito akar, vilnapaya pantaji, hovelik puran, paganapayo kadia, jenletanlik kuran, tite varna yogi jane, rumao nakoe, jakarta sitiko saje, ape jane soe, Kiv karaka kiv salai kivani kiv jana nanaka ko sakwa ke ekaleksiana vada sai vadinai kita jaka hove nanak jeko apujane ake jana soe patala patala agas agas or kor ke balta ke ekahane ke vad se setari kahan kateva asunka ekadat leka hoi dole ke heluk leke hoe vinas nanak vada akie ape jane ap salai salai te ser na paya nadari ave pave saman na janie samal sa sultan keri sati mandan kiri tul na hoveni jetis mano na visare antana sifti ke na ant antana karne de na ant antana vekesio na ant antana jape kya man mant Antana jape kitakar, antana jape paravar, ankarankate valai, take antana pae jai, eo antana jane koe, bahuta kaye bahuta hoi, vada sae buchatao, uche uper uchanao,
Ever huche hove koe tisuche ko jane soy. Chever ap jane ap ap nanak nadri kar midag. Bhota karamikya na jaye padata tate natamai. Kete mange jota par kete akananai vichar. Kete kaptute vekar kete lele mukarpai. Kete mure kai kai kete adupuk sadmar. Evi datri datar banagala si bane hoy ho rakna sake koi cheko kahe akan pai ho jane jitya moy kai ape jane ape te ake seve ke ike jisno vakshe safatsala nanak patshai patishau amul gun amul vapar amul vapari amul bandar Amul ave amul le jai, amul vare amul asamai, amul dharam amul divan, amul tul amul parvan, amul vakshish amul nishan, amul karam amul furman, amul amul akhyana jai, aka kalle valai, ake ved pat puran, ake pare kare vadyan, ake varme ake inda, ake govite gobinda, Ake ishera ke sid, ake kete ki te bud, ake taram ake dev, ake saram anjan sev, kete ake akan pai, o jane jitya makai, ape jane ape te, ake seve ke ike. Jeko kahe akan pai o jani jitya makai. Sodar ke ha sogar ke ha jit sarat samale Vaje narane ke sankar ke te gavan hare Ke te raj parisyo kayan ke te gavan hare Gave tuno pan pani vesantar gave rajataram duare Gave chekupat lekjana lekliktanam vichare. Gave ishir varma devi son sada sabare. Gave itita sanvete devtia dharnale. Gave siddha samadhyandar. Gave sad vichare. Gave jati sati santoki. Gave vir karare. Gavan panan panan rakisa jujube dharnale. Gave mohanyaman mohan suram achpiale. Gavan ratanu paritere atsati ratnale, gave jodmaha vansura, gave kar vichare, gave kandamaldar varvanda karkara ketare, setunu gave jodte pavan retetere vagrasale, urkete gavan semechidna avan nanakya vichare, soi soi sadachasaya sachasachinai, evi hosi jai rajasi rachinachin rajai, Rangi rangi vati karkar jinsi maya jinupai karkar veke kitapana jivtiske varyai jyotis bhave soi karsi hukamna kar rajai sopati sao sahapati sae nanagran rajai munda santok saram pacholi dhyanki keri bibut kinta kal kwarikaya jugatanta partit ai panti sagrajamati manje jagjit Adets se ades, adenilana denaha, juju egoves, bugat kiangi avandar, karkarva jenad, abnanati sabjaki ritsavarasad, sanjog vijog duka chalave leke avivak, adets se ades, adenilana denaha, juju egoves, ekamai jugativiae, tinchele parvan, Ek sansari, ek bandari, ek lahe divan, jivtis bhavetave chalave, jifove furman, uveke onanadranave, bautai obidan, adets se ades, adenidana denaha, jujue goves. Asan loe loe bandar, jodsapave soe kavar, karkarve ke sirjanahar, nanake sache ki sachikar, Adets se ades, adenila nadenaha, jujuve goves, ekudujiva lakove, lakove lakvis, lak lakera akie, ekanan jagadis,
नानक उत्तम निश न कोय राति रुति तिथि वार पवन पनिया करी पतल तीज विष धरती रति तरम साल तीज विष चिया जुगा के रंग तिंके नाना ने के नंद कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिते सोहन पंच परवान नननी करम पवे निशान काच पखाए ओते पाए नानक हे आजा पे जाए धरम कंका एगो धरम ज्ञान कंका आको करम केते पवन पनी वे संतर केते कन महेश केते वर में करी करी के वेस केते करम पुई मेर केते केते दू पदेश केते ईशा सुर केते केते मंडल देश केते सीध वदनर केते केते देवी वेस केते देव तरन सुन केते केते रत समन्दा केत्या कानी केत्या बानी केते पत नरिंद केत्या सुर्ति सब केते नानक अंतन अंत ज्ञान कान ज्ञान पच्छंत तिते नाथ को तनंत सरम कन की वानी रूप तिते करी करिए बहु तनुप ताकि गला कत्या न जाए जय को कहे के छे पछताए तिते करिए सराम मन मंबुद तिते करिए सरा सदा की सुत करम कन की वानी जोर तिते होर न कोय होर तिते जोन महा बंसुर तिमे राम गरिया भरपूर तिते सीतो सीतो में ममाए ताके रूप न कत न जाए नाओ मरन ताके जाए जिनके राम से मन माए तिते भगत वसे के लो गरियनन सचा मन सोए सच करना से निरंकार कर कर वे के नदर नहान तिते कन मंदर वर वंद जय को कहे तन तन अंत तिते लो आकार जीव जी हुकम तवे तिरकार जीव विगास से कर विचार नानक खतन कर असार जात पहार अधिर सुनियार एरन मात वे तकियार बोकला कन तपताओ बंदा पाओ अमृत दान करिय शव सक्षी तक सन चिंको नरम दिंकर नानक नदरी नदर नहाल श्लोक पवन गुरु पानी पिता मत दरत महत दिवस रोय तोय ताई ताया केले सकल जगत चंगिया।

तख्त सरबत गुरु द्वारिया ध्यान करके बोलो जी सतनाम। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी।

मूर्खच भेद न जानत महादेव खेत सदास निरंकार का चिंतन भिव आप अपनी बुरे चेती भरनत भिन्न भिन्न तुहे थेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसहरा एक रूपानुप स्वरूपा रांख बेहो राव कहे भूपा अमदज छे रज से तज खीनी उत्भुज खान बहो रच दीनी कहो फूल राजा हूँ वह बेटा कहो समित बेव संकर खेटा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप सुजंभव आप रक्षा मेरी तुम करो सिखु बार सिख संगरो दुष्ट चिथे उत्पा तुत पाता सकल मलेच करो हरन गाता जय अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट तुगत भवि मरे पूरक जवन भग परे तिहाड़े तिनके तुम संकार सब ठाड़े जो खल खोय कपार दे हैं ताके काल निकट न हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रिष्ट ते तत्काला कृपा दृष्टन चाहे निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध गर्मो सब होए दुष्ट चाच विसके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास थे ताहे उबारे जिन नर नाम तिहारो कहा दर्द दुष्ट दोख थे दहा खरग खेत में सरन तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सर्व थोर मोह सहाई दुष्ट दोख थे लेहो बचाई कृपा करी समझ जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्रता किरदिक सकल देखो हरता दुष्ट दोक निको चे करता श्री अस्तुज चब भे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन पचत पद पावे सोई दुख ना तिसे व्यापत खोहे अरिल सुने कुंजो आये सरस न पावे सुने मोर चतराये चतुरतावे दुख दर्द पो निकट नाथ निदाद रेखे रहे हो जो या की एक पार छोपे को कहे चौदोहरा संबत सत्र सस बनिजे अर्थ सस पुन कीन कीजे बाद रसदी अष्टमी रववाड़ा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा स्वया पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण खुराना अनेक कहे मत एक न मानियो सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जानियो हो श्री असपान कृपा तुमरी खर मैं ना कहो सब दोहे बखानियो दोहरा सगल दुआ

करते रे। सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, चिन्ह भुखा साब गवाया, खर शांत सुख मनाय वस्या, जिनेच्छा साब पुजाया, सदा कुर्बान कीता गुरु बित हो, जिस त्याहे वडियाया, कहे नानक सुनो संतो।

अमृत से ही खाए, कल में हो पुन गुण गोविंद गाए, सबसे नो कृपाल समाले साहे साहे, पिरथा कोई न चाहे जावे तुराहे। श्लोक मिला पंचमा अंतर गुर आराधना, जेवा चप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना, सुरनी सुनना गुर नाओ, सतगुर से तीरतिया दर्गे पाए थाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वटते जग में उदय।